0: अब आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसारण गरी सुनाउनेछौ प्रथम संस्कृत अब त्यसपछि हिन्दीमा समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः मानसिकरूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशामुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1,00,000 युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युवा कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्रनिर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापि जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्यप्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभाक्षेत्राणाम् उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढः सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभाक्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणनापट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ओडिशाराज्यस्य 3-दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11-दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्यसमारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत्पदकैः सह पदकतालिकायां 4th स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी इस दौरान वे कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील रूस चीन दक्षिण अफ्रीका मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है बिहार गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है बिहार के बांकीपुर गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 14 लोग मारे गए ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है थल सेना वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम

एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: तो गर्मियाँ शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव

0: के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर

राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: আকাশবাণী খবর পড়ছি অনিন্দ চট্টোপাধ্যায়। এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হলো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশের যুব সম্প্রদায় শারীরিকভাবে সুস্থ এবং আত্মবিশ্বাসী হলেই বিকশিত ভারত গঠনের পথ আরও প্রশস্ত হবে। সারা দেশে তিনি ভার্চুয়ালি বিকশিত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুব সংকল্প অভিযানের সূচনা করেন। বিহার, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনার কাজ শুরু হয়েছে। ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ে এনএসও প্রধানদের দুদিনব্যাপী বৈঠক আজ উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে শুরু হবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধ হতে চলেছে। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একটি সমাবেশে আত্মঘাতী হামলায় 5 নিরাপত্তা কর্মীসহ অন্তত 14 জনের মৃত্যু, আহত বেশ কয়েকজন। 2030 সালে শততম কমনওয়েলথ গেমস গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। আসি বিস্তারিত খবরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিকশিত ভারতে দেশের যুব সমাজকে শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হতে হবে। নতুন দিল্লিতে গতকাল তিনি ভার্চুয়ালি বিকশিত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুব সংকল্প অভিযানের সূচনা উপলক্ষে বলেন, তরুণদের সর্বদা মাদক থেকে দূরে থাকা উচিত এবং এটি স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ জীবনযাপন করা উচিত।
1: বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান কে লিয়ে নশা মুক্ত যুবা ইস মুভমেন্ট কা নাম হি ইসকে সংকল্প কো স্পষ্ট করতা হ্যায়। ক্যোঁকি জব দেশ নে বিকশিত ভারত কা লক্ষ্য তয় কিয়া হ্যায় তো ইসকে লিয়ে আবশ্যক হ্যায় দেশ কা যুবা তন সে স্বস্থ হো, মন সে স্বস্থ হো, আত্মবিশ্বাস সে ভরপুর হো আর ড্রাগস জেসি ঘাতক আদত সে হমেশা হমেশা দূর হো, ইহি ইস অভিযান কা উদ্দেশ্য হ্যায়।
0: প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাদক অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 100 সপ্তাহব্যাপী দেশজুড়ে জন অংশীদারিত্ব অভিযানের সূচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাদক মুক্ত সমাজ গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জন অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি রবিবার দেশজুড়ে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করা হবে। মাদকের অভিশাপ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসক্তির মারাত্মক পরিণতির বিষয়ে তরুণদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, মাদক পেশাগত জীবন নষ্ট করে, পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আক্রান্ত সদস্যদের সুস্থ হয়ে উঠতে সহায়তার জন্য পরিবারের উচিত সময় মতো সাহায্য নেওয়া, খোলামেলা আলোচনা করা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া এবং চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অস্বাভাবিক আচরণ, কথাবার্তা এড়িয়ে চলা, গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা বা ঘন ঘন টাকা চাওয়ার মতো আচরণগত পরিবর্তনগুলি মাদকাসক্তির প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। তিনি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের প্রতি আহ্বান জানান, যেন তারা নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাদক অপব্যবহারের বিপদ নিয়ে আলোচনা করেন এবং ক্যাম্পাসে সচেতনতামূলক অভিযানের আয়োজন করেন। তিনি বলেন, যুব সমাজের মধ্যে মাদক অপব্যবহারের রোধে তাদের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সারা দেশের 28,000 স্থান থেকে 1 কোটিরও বেশি তরুণ তরুণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। শক্তিশালী অর্থনৈতিক সূচক, শিল্প স্থাপনে উন্নতি এবং রপ্তানি ক্ষেত্রের পুনরুদ্ধারের ফলে চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের অর্থনীতি প্রায় 7% হারে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগের পূর্বাভাসের চেয়ে এই হার বেশি। শনিবার প্রকাশিত SBI রিসার্চের মনিটরি পলিসি কমিটি বিষয়ক প্রাগ বৈঠকে প্রতিবেদনে এই বৃদ্ধির হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। লোকসভায় আজ সুপ্রিম কোর্ট নাম্বার অফ জাজেস সংশোধনী বিল 2026 পেশ করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট নাম্বার অফ জাজেস আইন 1956 সংশোধন করার লক্ষ্যে কেন্দ্র আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল ভারতের প্রধান বিচারপতি ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা 33 থেকে বাড়িয়ে 37 করার উদ্দেশ্যে বিলটি পেশ করবেন। অন্যদিকে লোকসভায় আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স বিল 2026 পেশ করবেন। এর লক্ষ্য ব্যাংকের হিসেব সংক্রান্ত প্রমাণের আইন তৈরি করা। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রী রাও ইন্দ্রজিৎ সিং আজ লোকসভায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল 2026 পেশ করবেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটি পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি লাভ করতে পারবে। অন্যদিকে রাজ্যসভায় আজ অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উন্নয়ন সংশোধনী বিল 2026 নিয়ে আলোচনা করা হবে। অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প মন্ত্রী জিতেন রাম মাঝি 2026 সালের অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উন্নয়ন আইন সংশোধনের জন্য বিলটি পেশ করবেন। পাঞ্জাব বিধানসভার 7 দিনের বাদল অধিবেশনের আজ সূচনা হচ্ছে। বিজেপি, কংগ্রেস এবং শিরোমণি আকালির মতো বিরোধী দলগুলি ধর্মীয় স্থানের অমর্যাদা প্রতিরোধী আইনে সংশোধন, রাজ্যের ক্রমাগত বেড়ে চলা ঋণের বোঝাসহ নানা বিষয় এবারের অধিবেশনে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাঞ্জাবে চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধন SIR কর্মসূচিতে সে রাজ্যের 117টি বিধানসভা কেন্দ্রের এনুমারেশন ফর্ম 100% ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাঞ্জাবের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অনিন্দিতা মিত্র জানিয়েছেন, ডিজিটাইজেশনের কাজ নির্ধারিত সময়সীমার একদিন আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে দিল্লিতে গতকাল পর্যন্ত এসআইআর এর কাজে 88,06,000 বেশি এনিউমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়েছে। দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দিল্লিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের অংশ হিসেবে প্রায় 1,45,00,000 ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে দিল্লিতে এসআইআর ফর্ম বিতরণের কাজ চলছে। বিহার, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের 3টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনার কাজ শুরু হয়েছে। গত মাসের 30 তারিখে বিহারের বাঁকিপুর, গুজরাটের মঞ্জলপুর এবং মধ্যপ্রদেশের দাঁতিয়া কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সকাল 8টায় গণনার কাজ শুরু হয়। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনার কাজ শুরু হয়েছে, এরপর ইভিএম গণনা শুরু হবে। 3টি রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে ভোট গণনা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় এনএসওর প্রধানদের 2-দিনব্যাপী বৈঠক আজ উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে শুরু হবে। ভারতের সভাপতিত্বে এই বৈঠকের মূল ভাবনা স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য নির্মাণ। ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এমবিবিএস এবং অন্যান্য মেডিকেল পাঠ্যক্রমে ভর্তির জন্য প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিং আজ শুরু হচ্ছে। আগামী 8ই সেপ্টেম্বর থেকে 2026-27 ব্যাচের পঠন পাঠন শুরু হবে। মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি এমসিসি জানিয়েছে, ডিমড এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রথম পর্বের কাউন্সেলিং চলবে 4 থেকে 17 অগস্ট পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বের কাউন্সেলিং শুরু হবে 24 অগস্ট, চলবে 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অন্যদিকে তৃতীয় পর্বের কাউন্সেলিং 10 থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। খবর শুনছেন আকাশবাণী থেকে। আমাদের সংবাদ শোনা যাবে ইউটিউব চ্যানেল আকাশবাণী সংবাদ বাংলা, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা এবং এক্স হ্যান্ডেল এআইআর নিউজ কলকাতাতে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধ হতে চলেছে। বন্ধুদেশ কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর অনুরোধে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক হামলার নির্দেশ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, গতকালই মার্কিন বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় আকারের হামলার একটি পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত ছিল। সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান সহ উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের মতামত এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইরানি আধিকারিকদের অনুরোধ শোনার পর তিনি পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে আরও সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাহোর টুইন ফলসে একটি রেস্তোরাঁয় গতকাল একাত্মতার হামলায় 3 জন প্রাণ হারিয়েছেন, ঘটনায় 7 জন আহত, পরে সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়। টুইন ফলসের পুলিশ প্রধান ম্যাথিউ হিক্স বলেন, ওই হামলাকারী বছর 24-এর চ্যাড উইলিয়ামস বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে একটি সমাবেশে আত্মঘাতী হামলায় 5 নিরাপত্তাকর্মী সহ অন্তত 14 জন নিহত এবং বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছেন। সোয়াত জেলার কাবাল শহরে পুলিশের থানার ঠিক বিপরীতে সোয়াত শান্তি সমাবেশ চলাকালীন এই বিস্ফোরণ ঘটে। এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী বা সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, সাইদু শরীফের সেন্ট্রাল হাসপাতালে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কাবাল হাসপাতালে মারা গেছেন আরও 5 জন। খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ সোহেল আফ্রিদি এই বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং উপযুক্ত তদন্তের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে শ্রাবণ মাস উপলক্ষে আজ ভগবান মহাকালেশ্বরের শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রায় ভগবান মহাকালকে চন্দ্র মৌলেশ্বর রূপে সজ্জিত করে একটি ঐতিহ্যবাহী পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া হবে। বিকেল 4টায় শোভাযাত্রা শুরুর আগে মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। শোভাযাত্রাটি গুদ্রিচক, বক্সিবাজার এবং কাহারবাড়ি হয়ে রামঘাটে পৌঁছানোর পর শিপ্রা নদীর জল দিয়ে ভগবান মহাকালের অভিষেক ও আরতি করা হবে। সন্ধ্যায় শোভাযাত্রা পুনরায় মন্দিরে ফিরে যাবে। ভক্তদের সুবিধার জন্য মন্দির প্রশাসন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের দল এবং 24 ঘন্টার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা মোতায়েন করা হয়েছে। ভারতের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ফিউচার ওয়ারফেয়ার কোর্সের চতুর্থ সংস্করণ আজ নতুন দিল্লিতে শুরু হবে। 4 সপ্তাহব্যাপী এই কোর্সটি ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফদের সদর দপ্তরের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। কোর্সটিতে 3 বাহিনীর আধিকারিক, সরকারি সংস্থা, শিক্ষাবিদ সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। 2030 সালে 100তম কমনওয়েলথ গেমস গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্লাসগোয় গতরাতে 2026-এর কমনওয়েলথ গেমস সমাপ্তি হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আহমেদাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে কমনওয়েলথ গেমসের পতাকা এবং হোস্ট ব্যাটন গ্রহণ করে। এই প্রতীকী হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে 2030 সালের কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হিসেবে আহমেদাবাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। উল্লেখ্য, ভারত 13টি সোনা, 17টি রূপ এবং 9টি ব্রোঞ্জ সহ মোট 39টি পদক নিয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর IMD আজ অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিকে কেরালাতে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমায় জনজীবনে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর গতকাল 12টি জেলায় কমলা সতর্কতা এবং 2টি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, দেশের যুব সম্প্রদায় শারীরিকভাবে সুস্থ এবং আত্মবিশ্বাসী হলেই বিকশিত ভারত গঠনের পথ আরও প্রশস্ত হবে। সারা দেশে তিনি ভার্চুয়ালি বিকশিত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুব সংকল্প অভিযানের সূচনা করেন। ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়ে এনএসও প্রধানদের দুদিনব্যাপী বৈঠক আজ উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে শুরু হবে। খবর শেষ হলো, এরপর শুনবেন স্থানীয় সংবাদ সকাল 10:10।
2: আকাশবাণী কলকাতা, সমীক্ষা। শিরোনাম, হাইড্রোজেন ট্রেন ভারতীয় রেলে সবুজ বিপ্লব। লিখেছেন শ্রীজীব মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় রেল শুধু দেশের লাইফলাইনই নয়, এটি দেশের উন্নয়ন, প্রযুক্তি ও ভবিষ্যতের দিক নির্দেশও বহন করে। একসময় বাষ্পচালিত ইঞ্জিন থেকে
3: यो आकाशवाणी खरसाङ हो। आरती ठकुरीबाट सुन्नुहोस् प्रादेशिक समाचार। उत्तर बंगालको भ्रमणमा आउनुभएको राज्यकी नगर विकास एवं नगर निकाय मन्त्री अग्निमित्र पलले सिलगढ़ीबाट केही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक विकास कार्यहरूको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले उत्तर बंगालका विभिन्न नगर निकायहरूका अधिकारीहरूसित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक गर्नुभयो, जसमा क्षेत्रका विकास कार्यहरूमाथि सविस्तार चर्चा भयो। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलनमा अग्निमित्र पलले केही महत्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुहुँदै भन्नुभयो, डाबग्राम फुलबारीलाई चाँडै एउटा भिन्नै नगरपालिकाको रूपमा विकसित गरिनेछ। पछिल्लो लामो समयदेखिको उठिरहेको मांगलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले यस दिशामा सकारात्मक कदम उठाएको छ, जसको चाँडै प्रक्रिया शुरू हुनेछ। साथै सिलगढ़ीलाई हिमालयन सिटीको रूपमा विकसित गर्ने ठूलो योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो, जसबाट यो शहर उत्तर पूर्व भारतको एक प्रमुख व्यापारिक, पर्यटन औ आधुनिक हब बन्न सक्नेछ। मन्त्रीले यो पनि जानकारी दिनुभयो, आगामी 1 सितम्बरदेखि राज्यभरि नै प्रतिबन्धित प्लास्टिक तथा प्लास्टिक क्यारी ब्याग विरूद्ध विशेष अभियान शुरू गरिनेछ। बजारहरूमा ब्याग भेन्डिङ मसिन राखिनेछ। उहाँले भन्नुभयो, दार्जीलिङमा लामो समयदेखिकै व्याप्त पिउने पानीको समस्या समाधानको निम्ति पनि द्रुत गतिमा काम गरिँदैछ। दार्जीलिङमा हिजो गोजमोमोद्वारा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरियो। बैठकमा पहाड़का लगभग सबै राजनैतिक दलहरूले भाग लिएका थिए। छलफलको मुख्य एजेण्डा गोर्खाल्याण्ड र अन्य मुद्दाहरू रहेका थिए। उक्त सर्वदलीय बैठक पहाड़का विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँगै जेएनजी तथा 11 जनजाति माग समितिका प्रतिनिधिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। लगभग 6 घण्टासम्म चलेको बैठकमा सहभागीहरूले केन्द्र र राज्य दुवै स्थानमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार रहेको उल्लेख गर्दै गोर्खाल्याण्डको मागलाई अब सशक्त रूपमा अघि बढाउने उपयुक्त समय आएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। बैठकको मुख्य निर्णय अनुसार सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू तथा जेएनजीका सदस्यहरू सम्मिलित एक मस्यौदा समिति अथवा ड्राफ्टिङ कमिटी गठन गरिनेछ। उक्त समितिले गोर्खाल्याण्ड सम्बन्धी प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी भारतका गृहमन्त्री समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकमा गोजमोमो, भागोप्रमो, सिपिआरएम, आइजीजेएफ लगायत पहाड़का अन्य साना राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै गोजमोमो अध्यक्ष विमल गुरुङले गृहमन्त्रीले समस्याहरूमाथि छलफल गर्न र समाधान खोज्न सबै सरोकारवालाहरूसँग बैठक गर्न भन्नुभएको बताउनुभयो। 4 चियाबारीका श्रमिकहरूको सहभागितामा भारतीय मजदुर संघको शाखा समिति गठन गरिएको छ। पूर्वजार स्थित सार्वजनिक भवनमा आयोजित कार्यक्रममा नागरी धजे मण्डल अध्यक्ष पूर्ण खाती र जिल्ला एसटी मोर्चा प्रमुख पेम्बा लेप्चा विशेष उपस्थित थिए। यस अवसरमा धजे, एवन ग्रुप, मंगरजोङ र पोखरेबुङ चियाबारीका श्रमिकहरूलाई समेट्दै भारतीय मजदुर संघको शाखा समिति गठन गरिएको छ। मौसम विभागले आज पश्चिम बंगालको गंगा क्षेत्र र सिक्किममा मुसलधारे वर्षाको लागि ओरेन्ज अलर्ट जारी गरेको छ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अलिपुरका अनुसार बंगालको खाड़ीबाट निरन्तर आर्द्रतायुक्त दक्षिण र दक्षिण पूर्वी हावा चल्ने भएकाले राज्यका अधिकांश भागहरूमा वर्षा जारी रहने अनुमान गरिएको छ। उत्तर बंगालका धेरै जिल्लाहरूमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ भने दक्षिण बंगालका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको पूर्व अनुमान गरिएको छ। मौसम विभागले दार्जीलिङ, कालेबुङ, जलपाइगुडी, अलिपुरद्वार र कुचबिहार जिल्लाहरूमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने पूर्व अनुमान गरेको छ। आकाशवाणीबाट प्रादेशिक समाचार पूरा भयो।
4: आदरणीय सम्पूर्ण श्रोता नमस्कार। 103.5 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी खरसाङको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मनोवराजको न्यानो अभिवादन। श्रोता मित्र, हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति, हिज हामी नेपाली जातिका संस्कार संस्कृतिहरूको कुराकानीहरू लिएर आउने गर्छौँ। सोही क्रममा गत कार्यक्रममा मैले कुराकानी गर्दै थिएँ नेपाली उखान तुक्का र नेपाली जीवनशैलीमाथि केही कुराकानीहरू। यस विषयमाथि कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो विवेक सार्की अनि गोपाल विष्टज्यू। त अबलाई प्रस्तुत छ त्यही कार्यक्रमको रहल भाग।
5: यो लोकविश्वास र जनश्रुति चाहिँ नेपाली समाजमा के कस्ता छन् भन्ने विषयमा अलिअलि चर्चा गरौँ। यो यस विषयमा अलिक प्रश्न पार्दै केही कुराहरू राखौँ होला।
6: अब यो जनश्रुति र लोकविश्वास भन्ने कुरा त अब एकअर्कामा सम्बन्धित हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ। लोकविश्वासहरू चाहिँ अब जनश्रुतिमै आधारित हुन्छ, होइन? त्यो जनश्रुतिकै आधारमा समाजमा, परिवारमा, होइन, एउटा समुदायभित्र फैलिने हो नि त। त्यसैले अब त्यो फस्टाउँदै जाने कुरा हो। र त्यसैले अब जति पनि नेपाली समाजमा अब के भन्नु, लोक प्रचलित लोकमा चलेका जति पनि अब लोकविश्वासहरू छन्, यावतहरू छन्, जस्तै अब नेपाली लोक समाजमा जीवनमा चलेका, अब जस्तै आँखा लाग्नु भन्ने छ नि, नजर लाग्नु, होइन? अब हामी जस्तै साना नानीहरू, जन्मेको नानीहरूलाई यसो कालो टिका लगाइदिन्छौँ नि, होइन?
5: कसैको एउटा लोकविश्वास
6: लोक अब अन्त त्यसरी नै अब जस्तै यो नजर लाग्नु भन्ने कुरा पनि फेरि खानपानसँग पनि हुँदो रहेछ। फेरि खानपानसँग त्यो अब जस्तै प्रत्येक खानामा हामी अरूको चोखे नलाग्छ भने त्यो बेसार हाल्ने क्या, हल्दी हाल्ने, त्यो पनि छ नि, होइन? खाना खानु अगाडि सुरु गर्छौँ, अप्सनी दिन्छौँ अनि जस्तै अब जस्तै बालीहरू लाउँदाखेरि नष्ट भयो भने, होइन, ए फल्नाले भन्ने, जस्तै अब पशु प्राणीमा पनि हुन्छ त्यो, अब गाईले दुध दुनी छोड्यो भने त्यो नजर क्या, अब
5: नजर लाग्यो कि
7: त्यही कुरा,
5: जस्तो कि बाली नाली सप्रेन भने पनि अब हामी कति भन्छौँ नि, समयमा नरोपेर पनि होला, तर त्यसमा पनि अब एउटा हाम्रो छ नि, यो राँकेहरू लाग्यो भन्ने पनि एउटा जनविश्वासै रहेको हामी पाउँछौँ नि त। यस्ता कुराहरूले पनि समाजमा चाहिँ केही प्रभाव चाहिँ पारिरहेको हुन्छ नेपाली लोकजीवनमा।
7: यो विश्वासहरूमै नि अब हामी कति सुन्दर सुन्दर ठुल्ठुला भवनहरू, होइन, आजभोलि त सङ्गमरमरको टाइल्सको बनाउँछौँ, त्यतिकै हामी छोड्दैनौँ नि त। त्यसको अगाडि के हामी के झुन्डाउँछौँ, हरियो खोर्सानी निम्बु झुन्डाएर राखिदिन्छौँ, कि नभए कालो घोडाको नाल, त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ घर सुरक्षित हुन्छ, आँखी डाइ लाग्दैन, भूतप्रेत अथवा बोक्सी डाइले सताउँदैन भने त्यो विश्वास हो नि त। हुनु त हामीले आजभोलि अब आधुनिक ढङ्गको अथवा शैलीको घरहरू बनाउँछौँ, त्योभित्र हाम्रो त्यो जुन परापुर्खले अथवा हाम्रा पुर्खाहरूले सिचेका अथवा उनीहरूले विश्वासका रूपमा लिएका मान्यताहरू अथवा लोकविश्वासहरूलाई आज पर्यन्त पनि हामीले के गरिरहेका छौँ, राखिरहेका छौँ नि सम्हालेर, अनि त्यो नै हामीले आउने भावी पुरुषलाई पनि सिकाउँदै जाने हो अथवा उनीहरूलाई पनि सुनाउँदै जाने हो। अब यस्तै विश्वासहरूकै क्रममा हाम्रो नेपाली नेपालीमै भनौँ, नेपाली लोकजीवनमा अथवा हाम्रो नेपाली लोकसमुदायमा एउटा जनश्रुति क्या लेजेन्डको रूपमा हामीले त्यसलाई एकदमै स्थानीय अथवा लोकल लेजेन्डको रूपमा चाहिँ हामीले सानोदेखि सुन्दै आएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सायद तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, त्यो चाहिँ हो वनझाँक्रीको कथा। वनझाँक्री, होइन, ल्याम्ल्यामे। अनि त्यो वनझाँक्री चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, हामी खुब त्यति बेला बोजूले भन्नुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ खुब चाख लिएर सुन्थ्यौँ क्या, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो सानो पुड्को परेको मान्छे, होइन, अङ्ग्रेजीमा ड्वार्फ भनेर भनिन्छ, अनि त्यो पुड्को मान्छेले चाहिँ जो नानीहरूको चाहिँ मन मस्तिष्क के छ पवित्र छ, त्यो नानीहरूले चाहिँ कसैले पनि कुभहरू चिताउँदैन, त्यस्ता नानीहरूलाई चाहिँ पुर्णेको छेकमा अथवा राम्रो कुनै थिटीमा चाहिँ टिपेर, टपक्कै टिपेर जङ्गल लान्थे अरे है। अनि 8-10 दिन अथवा हप्ता 12 दिन राखेर, कसैलाई महिनासम्म राखेर चाहिँ त्यो झाँक्रीको विद्या क्या, मन्त्र तन्त्र, रोगीहरूलाई निको पार्ने विभिन्न प्रकारका उपचारहरू, सँगसँगै उसलाई त्यो लोक औषधिको पनि ज्ञानहरू दिएर चाहिँ पठाउँथे अरे। फेरि त्यहीसँग जोडिएको अर्को कथा त्यही पुड्को वनझाँक्रीको स्वास्नी अथवा उसको बुढी चाहिँ को हुन्थ्यो अरे ल्याम्ल्यामे हुन्थ्यो अरे ल्याम्ल्यामे चाहिँ तपाईँको एकदमै अल्गै परेको है उसले चाहिँ नानीहरू खाने मान्छेहरू खाने विभिन्न पशु प्राणी खाने तर त्यो पुड्को वनझाँक्रीले चाहिँ आफ्नो शिष्य जसलाई लगेको छ झाँक्री बनाउनु उसलाई चाहिँ आफ्नो तन्त्र मन्त्रले लुकाएर राख्थ्यो अरे भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरा भनिरहनुहुन्थ्यो क्या अनि यो लेजेन्ड अब हामीले यसलाई पत्ताइहाल्नु पनि मिलेन होइन फेरि यसलाई यसमा वैज्ञानिकता छ भने नकार्नु पनि नपत्याउनु पनि हामीले मिलेन अब धेरैलाई देखेको छु आज पनि तपाईँहरूको गाउँमा अथवा हाम्रै गाउँमा पनि है छरछिमेकमा त्यस्ता झाँक्रीहरू छन् जसलाई चाहिँ कसले लगेका वनझाँक्रीले लगेका भनेर कथा गर्छन् साँच्चै थुप्रै बिमारीहरूलाई जाति पनि
6: पारिरहेको छ
7: अब यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले वैज्ञानिकहरू लिएर यही कुराहरू चाहिँ क्या जनश्रुतिबाट चाहिँ पुस्ता दर पुस्ता चाहिँ फेरि लोकविश्वासको रूपमा चाहिँ त्यो हस्तान्तरण हुन्छ
6: अब नेपाली समाजमा त अब लोकविश्वासको त्यो जुन चाहिँ प्रभाव त सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेकै छ होइन वास्तवमा हामी त्यो उठ्दा सुत्दादेखि नै हाम्रो त्यो दैनिक जीवन कार्यमै हामी त्यो विश्वासमै वरिपरि घुमिरहेका हुन्छौँ खासमा चाहिँ त्यो अड्किरहेको हुन्छ अब नेपाली समाजमा लोकविश्वासको कुराहरू गर्नु भने जस्तै अब तपाईँले धामी झाँक्री भन्नुभयो होइन त्यो बिजुवाको कुराहरू गर्नुभयो अब अहिले जो जति नै आधुनिक त्यो प्रविधि अब हामीले एउटा डक्टरकोमा लाने भयो भने हामी पहिलोचोटि गाउँघरमा अब त्यो सुई लाउनुभन्दा अघि होइन त्यो डक्टर देखाउनुभन्दा अघि कुनै पनि बिरामीलाई
5: त्यो
6: एकपल्ट झारफुक चाहिँ गर्नै पर्ने अब त्यो हाम्रो विश्वासै
5: हो अब विश्वासै हो नि त
6: फेरि हामीले होइन अब हामी त्यो झारफुक नगरी लान्छौँ भन्दा फेरि हामीलाई पनि फेरि मनमा चिसो लाग्छ ला
7: कति जङ्गलको लागि
6: के पो भइहाल्छ कि भन्ने क्या अब
7: बिगार पो परेको थियो
6: बिगार पो यस्तो खालको लोकविश्वास छ होइन धामी झाँक्री सम्बन्धी अब
5: यसरी हामीले हेर्दा चाहिँ भनेपछि लोकविश्वास चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ जरैदेखि पाइन्छ र अहिले पनि
6: अहिले पछिसम्म त्यो लोक समाजमा नेपाली समाजमा त्यो यावत रहने कुरा हो
7: मलाई लागेको चाहिँ अब हुनसक्छ यो मेरो व्यक्तिगत सोचाइ अथवा विचार हो अब यो जनश्रुतिहरू है लोकविश्वासहरूमा आधारित रहेर विशेष गरेर म अब यता पूर्वीय त भन्दिनँ पाश्चात्य देशहरूमा चाहिँ क्या विभिन्न लेजेन्ड्स अथवा ओरल ट्रेडिसनमा रहेका जनश्रुति कथा लोककथाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आज चाहिँ के गरेको पाइन्छ भन्दाखेरि चलचित्रको रूपमा मुभी अथवा फिल्मको रूपमा चाहिँ उनीहरूले ठुल्ठुलो पर्दामा
6: देखाएको
7: त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो जनश्रुति पनि बाँचिरहेको छ त्यसको प्रभाव यता पूर्वीय देशहरूमा पनि परिरहेको छ त्यो काम चाहिँ हाम्रो अथवा नेपाली समुदायको अथवा हामी हाम्रोमा रहेको जनश्रुतिहरूको चाहिँ कतिवटा हुन सकेको छ अझै त्यस्तो कामहरू भयो भने चाहिँ आउने नानीहरू अथवा पुस्ताहरूले चाहिँ सजिलै त्यो कुराहरूलाई यस्ता कुराहरूलाई है चलचित्र अथवा पर्दा अथवा मुभी फिल्मको माध्यमबाट हेरेर चाहिँ अझ राम्रोसँग
5: डकुमेन्टेसन बनाएर
7: त्यसलाई बुझ्ने सक्ने थिए होला उनीहरूलाई मनोरञ्जन सँगसँगै ज्ञान दिनु पनि एउटा यसको विशेषता हो है जनश्रुतिको जस्तै अब एउटा त्यो मुभी अलिकति भनिहालेर चलचित्र जस्तै यो सिन्ड्रेलाहरू भन्ने भयो स्नो वाइट भन्ने भयो है मेलिफिसेन्ट जस्ता चलचित्रहरू नि यो सबै लेजेन्ड्स हो नि त अथवा जनश्रुतिलाई
6: नै तर आज चलचित्र बनाएर
7: पाश्चात्यको चाहिँ हामीलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि यी सबैका राम्रा राम्रा चलचित्र बनिएका छन् नि त अब हाम्रा पनि यतातिरका अथवा हाम्रो नेपाली अब हामीले वनझाँक्रीतिर नि
6: वनझाँक्रीकै एउटा त्यसलाई चलचित्र बनाएर हामीले त्यसलाई देखाउन सक्छौँ सक्छौँ नि
7: त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले अब काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि
6: अर्को कुरा यो लोकविश्वासमा पनि धर्मको ठुलो प्रभाव परेको कसरी प्रभाव परेको हुँदोरहेछ भने पनि अब कतिवटा लोकविश्वास धर्मबाटै आएको हुन्छ नि जस्तै अब श्राद्ध कर्महरू हेरौँ न होइन श्राद्ध गरिने कर्म छ अब कतिपय अब नेपाली समाजमा पनि विभिन्न जातिहरूले कतिले बलि प्रथाहरू दिन्छ आफ्नै विश्वासका आधारमा त्यो पनि त्यो धर्मैबाट प्रभावित भएको जस्तै कुल मान्नु कुल देउता मान्नु होइन पितृ मान्नु
7: हाम्रो विश्वास
6: धर्मबाटै आएका त्यो विश्वास स्वर्गलोक मृत्युलोक
7: गरेका छौँ पातालोक
6: त्यो धर्मबाटै प्रभावित त्यही आएर चाहिँ अहिले सान्दर्भमा
7: हुन्छै हुन्छ अन्धविश्वासी चाहिँ अनि त्यो भएर अब कतिवटा कुराहरूलाई हामीले अब यो विश्वास यो झुटो हो भनेर त्यसलाई नकार्नु
6: नकार्नै सक्दैन
7: हामीले हाम्रै अस्तित्वलाई होइन हाम्रो कतिवटा सांस्कृतिक पक्षहरूलाई अलिकति हेय दृष्टिले अथवा होचाएर हेरेको जस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो नेपाली समाज अब यसमा विभिन्न जात गोष्ठीहरू बस्छन् है, आज आएर त अब अनेपाली समुदायहरू बिहारी बङ्गाली है मुस्लिम आदि पनि जोडिएका छन्। यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो लोक समुदाय एउटा फराकिलो बनिएको छ, किन भन्दाखेरि हामी मुस्लिमको चाड इदमा रमाइरहेका हुन्छौँ, बिहारीको चाड है मा पनि अनि विभिन्न सम्प्रदायको चाडहरूमा पनि हामी सम्मिलित भइरहेको हुन्छौँ। यसो हुँदाखेरि हामीले अब उनीहरूका क्या उनीहरूका विश्वासलाई उनीहरूका कतिवटा राम्रा राम्रा कुराहरूलाई है उनीहरूले मानिलिएका कतिवटा सांस्कृतिक अथवा नियमहरूलाई पनि हामीले आफ्नो नेपालीकरण गरेर है हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। जस्तै यो लागो फागोमा अघि तपाईँले भन्नुभएको छ झाँक्री नपाउँदाखेरि कति मैले देखेको छु नेपालीहरू यो मौलवीहरूकोमा पनि है फुक फाल्ने
6: उनीहरू जान्ने हुन्छन् भनेर त्यहाँ पनि लगेर आउँछ।
7: जस्तै यो जुत्ताहरू सिउने मोची समुदायको मोची पनि एकदमै जान्ने हुन्छन् उसकोमा पनि लगिन्छ। यसो भन्दाखेरि अब यो लोकविश्वास चाहिँ
6: विश्वासकै एउटा पार्ट हो।
7: जहाँ बस्छौँ हामी जुन मानिस समुदायहरू बस्छौँ एकाअर्कामा यो साटासाट हुने हामीले लिने अथवा दिने काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ जस्तो लाग्यो मलाई है।
6: यो मैले एउटा के भन्ने
7: आदान
6: प्रदानको एउटा साधन पनि बनेको छ लोकविश्वास। एउटा समूहदेखि अर्को समूहदेखिले लिने
5: यस्ता केही अब नेपाली लोकविश्वास र जनश्रुतिहरूको तपाईँहरूले उदाहरण दिँदै अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ होला, आफ्नो आफ्नो कुरा राखेर समापनतिर जाउँ होला।
7: हामीले लोकविश्वास जनश्रुति अनि नेपाली समाजको विषयमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ है। अब हाम्रो लोकविश्वास नेपाली समुदायको लोकविश्वास अब नेपाली समुदायभित्र अथवा समाजमा के कस्ता प्रकारका जात गोष्ठीहरू बस्छन् भनेर पहिला हेर्नुपर्छ। अब समाज भनेको मानिसहरूको एउटा सामूहिक एउटा गठबन्धन अथवा सङ्घ हो जहाँ चाहिँ मानिसहरूले एकअर्कामा आफ्नो भाव विचार सँगसँगै सांस्कृतिक वैचारिक है अनि नियम कानुनका विभिन्न कुराहरू एकअर्कामा आदान प्रदान गर्छन् र उनीहरू मिलेर एउटा बस्ने ठाउँ हो उसलाई समाज भनिन्छ। अनि त्यो समाज हाम्रो नेपाली समाज आज अघि भने जस्तो फराकिलो भएको छ, हामीले विभिन्न जनसमुदायलाई सम्प्रदायहरूलाई पनि आज स्वीकार गरिरहेका छौँ र एउटा नेपाली समाजको रूपमा चाहिँ हामी बाँचिरहेका छौँ। र नेपाली समाजमा पनि विशेष गरेर विभिन्न प्रकारको जात जातिहरू छन्, राई लिम्बू तामाङ मगर है कामे दमै सार्की बाहुन छेत्री इत्यादि। अब यसमा विभिन्न समुदायको समुदायगत पनि फेरि आफ्नै प्रकारको पनि लोकविश्वासहरू
6: छन्।
7: जस्तै हामी राईहरूले चाहिँ हाम्रो लोकविश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी प्रकृतिलाई धेर पूजा गर्ने गर्छौँ, प्रकृतिसँग नजिकमा पनि बस्ने गर्छौँ अनि हाम्रो झाँक्री बिजुवा जस्ता हाम्रा पुरोहित अथवा गुरु भनौँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुनै पनि अनिष्ट कुराहरू भए है दुःख बिमारहरू भए उनीहरूले चाहिँ के गर्ने झारफुक गर्ने काम गर्छ। त्यो सँगसँगै कोही पनि परिवारमा सदस्यहरू बितेर गए उनीहरूलाई बाटो लगाउने काम पनि झाँक्री बिजुवाले गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यो अब राईको मात्र हो भनेर यसलाई भन्न सकिँदैन नि त, किन भन्दाखेरि अन्य समुदायमा फेदानमा छ त्यहाँनिर होइन, अन्य समुदायमा त्यहाँनिर पुरोहितहरू छ उनीहरूले पनि गर्ने काम त एकै हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत नभएर यो चाहिँ व्यष्टि नभएर चाहिँ समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो लोकविश्वास चाहिँ हामीले आदान प्रदान गरेर यसलाई हेरिरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि लोकविश्वासमा एउटा विभिन्न प्रकृतिसँग अघि मैले भनेको थिएँ नि जोडिएका हुन्छन् भनेर, हामीले प्रकृतिमा भएको एउटा रुखमा पनि कति विश्वास गर्दोरहेछौँ भन्ने एउटा सानो उदाहरण लिएर म आफ्नो कुरालाई अन्त गर्न चाहन्छु। एउटा भलाइको रुख भन्ने हुन्छ पहाडमा हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन, अनि यो भलाइको रुख चाहिँ जङ्गलमा हुन्छ अनि घाँस खेताल अथवा दाउरा काट्नु जाँदाखेरि कति मानिसहरू चाहिँ यो भलाइको रुख नचिनेर काटी पठाउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भलाइको रूपबाट चाहिँ एउटा के निक्लिन्छ चोप र सायन जस्तो निक्लिन्छ, केमिकल रिलिज हुन्छ अनि त्यो चोपले चाहिँ हाततिर लागेपछि जिउमा लागेपछि एकदमै चिलाउने अनि डाम्मा डुम्मा सुनिने अनि कुनै पनि दबाईहरूले जाति नहुने प्रकारको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भलायो लागेको बिमारीलाई त्यो भलायो झार्नुको लागि चाहिँ यता घरमा आएर फुक्पा गरिन्छ, झाँक्रीले फुक्पा गर्छ अथवा खरानीले पूजा गरेर खरानी लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो भलाइ लागेको ठिक भोलिपल्ट गएर चाहिँ त्यो काटेको भलाएको रुखलाई चाहिँ त्यो जुन बिमारी छ उसले गएर चाहिँ लु आजदेखि चाहिँ हामी मित भयौँ, मैले तपाईँलाई चोट पुर्याएँ अरे मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर खरानी चामल इत्यादि राखेर पूजा गरेपछि चाहिँ त्यो बिमारी साँच्चै नै के हुन्छ निको पनि हुन्छ, ज्वरो आइरहेको डाम्मा डुम्ब सुन्निएको आँखा रातो भएको बिमारी जाति पनि हुन्छ, यो कुरा अब मैले पनि देखेको अनुभव पनि गरेको है। अनि त्यो डक्टरले बिमार जाति बन्न नसकेको कतिवटा कुराहरू विश्वासले आस्थाले पनि जाति हुँदो रहेछ भनेपछि यो विश्वासलाई हामीले लोकविश्वासलाई अन्धविश्वास मात्र हो भनेर हेला गर्नु हेय गर्नु चाहिँ आफ्नै अस्तित्व आफ्नै संस्कृति होइन आफ्नै नियम र हाम्रो परापुर्खदेखि चलिआएको कतिवटा ज्ञान उनीहरूको उनीहरूले बाँचेका उनीहरूले सिँचेका यस्ता थुप्रा ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले अवहेलना गर्नु हो जस्तो मलाई लाग्छ र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर अगाडि राख्नुपर्छ। अनि विशेष गरेर आउने भावी पिँढीलाई जनश्रुति के हो, नेपाली समाज के हो, लोकविश्वास के हो इत्यादि विषयमा उनीहरूलाई भन्ने उनीहरूलाई बाटो देखाउने दोहोऱ्याउने काम चाहिँ आजको हाम्रो पुस्ताहरू पनि हो। अब आज पछि आउने पुस्ताहरू के कस्तो संसारमा बाँच्छन् थाहा छैन, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो एआई एजिआईको टेक्नोलोजीले संसार अर्कै बनिसकेको छ, तापनि आफ्नो अस्तित्व है आफ्नो जाति गोष्ठी आफ्नो लोक अनि आफ्नो लोक समुदायलाई बचाउन अगाडि निरन्तर बढाउन चाहिँ यस्ता कुराहरूले नै अहम भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यति भन्दै म मेरो कुरालाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद।
6: अब हामी अन्तम यो दुई तिनवटा वाक्य भन्छौँ यस सम्बन्धमा, त्यसपछि हामी सक्छौँ। वास्तवमा लोक भनेको विश्वास भनेको लोकको आस्था हो, विश्वास हो, र यो आस्था र विश्वास चाहिँ लोकको मानसिक र मनोवैज्ञानिक तहमा बाँचिरहने एउटा के भन्ने एउटा विषय हो भनौँ, र यो परम्परादेखि अहिलेसम्म र पछिसम्म पनि नेपाली समाजमा अथवा भनौँ सबै समुदायमा संसारप्रति जति पनि समुदाय छ त्यो समुदायसम्म बाँचिरहने एउटा विषय हो।

0: আমাদের জনগণনা আমাদের বিকাশ
1: জনগণনার প্রথম পর্যায়ে হাউস লিস্টিং এবং হাউসিং সেন্সাস অর্থাৎ আপনাদের আবাসন গণনা করা হবে আসুন নিজের অংশগ্রহণে এটাকে সফল করে তুলুন প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্ত হোন প্রতিটি বাড়ি যুক্ত হোক এবং দেশ এগিয়ে যাক সেন্সাস 2027 আমাদের জনগণনা আমাদের বিকাশ
2: श्रोता आज हामी अगस्त महिनाको 3 तारिकमा प्रवेश गरिसकेका छौं यति बेला देशका अधिकांश स्थानहरूमा मनसून सक्रिय रहेर विशेष गरी हाम्रो पहाड़ी क्षेत्रमा त झनै झरीको मौसम जारी नै छ बीचबीचमा घामको दर्शन पनि पाइरहेका छौं भने वर्षाको क्रम भने रोकिएको छैन आज खरसाङ दार्जीलिङ कालिम्पोङ मिरिक क्षेत्रमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहँदै अधिकतम तापमान करिब 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियसको आसपासमा रहने अनुमान गरिएको छ केही स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुन सक्ने भएकोले यात्रा गर्दा आवश्यक सावधानी अप्नाउनुहोला भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले पहिरोको जोखिम भएका स्थानहरूमा सतर्क अप्नाउनुहोला

सन् 1974 प्राय आधा वर्षसम्म रोगले आक्रान्त भएर त्यही साल डिगवीर सिंह रामुदामुको मृत्यु भयो। आकाशवाणी खर्सा।

संगीत सहदेव चामलिङ, साथ संगतकर्ता भायोलिनमा विकास विश्वकर्म, बाँसुरीमा सुरज गजमेर, गिटारमा पन्ना गजमेर औ किबोर्डमा उपेन्द्र प्रधान। वाचन किरण ठकुरी, सोहेन्द्र तामाङ, शबनम प्रधान अनि सुषमा सिंह। ध्वनि अङ्कन जयपाल लामा, स्वरलय डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो खरसाङ, ध्वनि सम्पादन एवं सम्मिश्रण महेश्वर तामाङ। यो आकाशवाणी खरसाङ हो।

0: हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौं। अब आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी महासमाचार यस केन्द्रबाट रिले गरेर सुनाउने छौं।
1: मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकार बहिस्साक्षी विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के

प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। त्रिसैन्य भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का चौथा आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अभ्यन केंद्र द्वारा समन्वित है। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबुल कस्बे में थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में संवेद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौँ।
1: आज हामीसँग मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर शशि जेन्सिराला यहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ, अनि यहाँ विशेष हृदय रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँसँग हामी हृदय रोगबारे जान्नेछौँ, आउनुहोस् हामी बात गरौँ। आकाशवाणी खरसाङमै आपका स्वागत।
2: थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड मैं डाक्टर शशिवर्धन जेन्सिराला, मैं इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजिस्ट, स्ट्रक्चरल हार्ट एन्ड एंडोवैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ।
1: सर, आप आकाशवाणी खरसाङ से बात कर रहे हैं, कैसे अनुभव लग रहा है, कैसे लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आई एम बहुत हैप्पी हूँ, लाइक एंड थ्रिल्ड भी हूँ, लाइक यहाँ आप सबसे मुलाकात हो रही है एंड आप सबको कार्डियक डिसीजेस, वैस्कुलर डिसीज के बारे में जानकारी देना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है एंड अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है। दिस इज, ये बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है।
1: सर, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ये हार्ट का रोग, जो मुटु का रोग है ना सर, ये किस तरह से शुरू होता है? मुटु का रोग किस कारण लोगों को जो हार्ट में रोग पैदा हो जाते हैं, इसका क्या कारण है?
2: सो आम जनता को जो समझ में आता है कि हार्ट डिसीज का मतलब है कि हार्ट के जो ब्लड ले जाने वाले

0: में चर्बी इकट्ठा होती है, ये एक डिसीज है। बट इसके अलावा हार्ट में बहुत सारा डिसीजेस होते हैं, लाइक माइट्रल वाल्व करके एक डोर होता है, उसका प्रॉब्लम्स आता है, एओर्टिक वाल्व का प्रॉब्लम्स आता है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस का प्रॉब्लम आता है, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ऐसे हजारों बीमारियां है हार्ट का। सो आप जो सोच रहे हो अभी मेरे से आप जानना चाहते हो कि हार्ट का ब्लॉकेजेस का क्या कारण हो सकता है। सो नॉर्मली आमतौर में हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर एक छोटा सा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसका नाम है एंडोथीलियम। अगर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग एंडोथीलियम में डिसरप्शन होती है, मतलब इमेजिन करो आपका वॉल है, मतलब जो दीवार है, दीवार के ऊपर हमने पेंट किया, तो भगवान पेंट के साथ ही हमारा ब्लड वेसल दिया, तो अगर वो पेंट फट गया और पेंट गैप आ गया तो उसके अंदर चर्बी आके इकट्ठा हो जाती है। वो गैप क्यों आ रहा है ये हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड अडल्ट्रेशन ऑफ फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, और हमारा हैबिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एंड ऑल दिस थिंग्स, डायबिटीज, इन सब में। तो जेनेटिकल कंडीशंस भी होती है, जेनेटिकल कंडीशन से भी अगर आपका फादर या मदर को किसी को भी हार्ट का डिसीज अर्ली एजेस में आ रहा है, उसका मतलब है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन अर्ली हो रहा है उनको। तो जब उनको अर्ली हो रहा है तो आपको भी अर्ली आने का रिस्क रहता है। तो इसको मींस जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गया, लैब इन्वेस्टिगेशंस बढ़ गई, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ गया, दुनिया भर का डॉक्टर्स बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो उसमें से हमें ये पता चला है कि कुछ ब्लड मार्कर से उससे हम पकड़ सकते हैं इनको, इनको ट्रीट कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एट मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन, वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्यों होगा, एक हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, एक जेनेटिकल है, एक अनवांटेड थिंग्स लाइक फूड अडल्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं है बट वो हो सकता है, स्ट्रेस आपका हाथ में नहीं है बट जब वो होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन होती है, ये सारा है। पोल्यूशन की वजह से भी एंडोथेलियल डिसफंक्शन होती है। तो जैसे एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा वो डिस्टर्ब होगा, वो खराब हो जाएगा, तो उसमें चर्बी आके इकट्ठा होके ऑक्सीडेशन होती है, जो ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बोलते हैं इसको, वहां से एक्युमुलेट होना इजी है, वहां मींस आके फंसना इजी है को चर्बी को, बट वहां से निकलता नहीं है, तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे इकट्ठा होके जो हमारा जो रास्ता है रास्ता को बंद कर देती है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है।
1: सर मैंने सुना है कि जो स्मोकिंग करता है उनके ऊपर कितना हार्ट में असर पड़ता है जो स्मोकिंग करता है?
0: कुछ स्टडीज है, स्टडीज ऐसे बोलते हैं कि केस कंट्रोल स्टडीज, कोहॉर्ट स्टडीज करके स्टडीज है, स्टडीज ये बताते हैं कि कोई भी फैक्टर, अगर मैं आज उठ के बोल दूंगा कि आप स्मोकिंग के वजह से आपको हेयर फॉल होगी, ऐसे कोई भी ऐसे स्टेटमेंट आप रिलीज नहीं कर सकते हो, तो उसका एक आधार होता है, मतलब स्टडी होता है, वो स्टडी हमारे पास जो स्टडीज है वो बताते हैं कि 30% ऑफ चांसेस स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स का डिसीजेस, कार्डियक एंड वैस्कुलर डिसीजेस का इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस बोलते हैं, मतलब जो जिस पे जो स्मोकर है जो नॉन स्मोकर है उनके बीच में कितना परसेंट ऑफ हाई रिस्क है, तो 30% ऑफ रिलेटिव रिस्क ज्यादा है। मतलब अगर दोनों 30 ईयर दोनों मेल को हम पकड़ेंगे, एक स्मोकर है एक नॉन स्मोकर है, स्मोकर को 30% ऑफ चांसेस हाई है नॉन स्मोकर से कंपेयर करेंगे, तो वो स्टडीज हमारे पास प्रूवन है, प्रिवेलेंट है, रोबस्ट डेटा है हमारे पास, इतने सारा डेटा है कि आप स्मोकर और अल्कोहल जो भी लेते हैं एंड जो स्ट्रेसफुल लिविंग लेते हैं है एंड जिनका फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल एंड स्लीप वगैरह ठीक नहीं है उनका प्रोपेंसिटी ज्यादा है, उसमें से स्मोकिंग बहुत नोटोरियस है, उसका क्लियर कट 33% ऑफ रिलेटिव रिस्क ज्यादा है।
1: सर जैसे अभी हम लोग देख रहे युवाओं में थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है अभी के समय में, ठीक है, बहुत सी युवा लोग है जिसका हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
0: इसका बेसिकली 3 मेन कॉजेस हम सोच सकते हैं। वन इज लाइक फूड, जो हम फूड लेते थे इससे पहले, मैं जब छोटा बच्चा था तो हम बाहर का खाना ना लाइक हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार खाते थे, उससे क्या होता है कि बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसका हमें आता पता नहीं है, फूड अडल्ट्रेशन का पता नहीं है, तो अब जो खाने का टाइमिंग भी है, जो जब हम बचपन में होते थे 7-8 बजे के बाद खाना होता ही नहीं था, बाहर जाते भी नहीं थे, खाते नहीं है, बिकॉज उसको अप्रोप्रिएट टाइम देते हैं। अगर आप लेट नाइट कर रहे हो तो लेट नाइट सो रहे हो, आपका नींद भी कम हो रहा है, ये सारा ना इंटरलिंक्ड है। आप फूड 6-7 को ले लोगे तो रात तक आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम आप सोते हो आराम से, तो अभी नींद भी कम हो गया, जो नींद लेते हो वो भी क्वालिटी वाला नींद नहीं है। स्लीप में ना साइकिल्स होते हैं, REM साइकिल, NREM साइकिल करके साइकिल्स होते हैं, वो साइकिल को परिपूर्ण करना है, उसमें 2-3 साइकिल्स वो घूमना है पूरे रात में, अगर उसका साइकिल्स का इनकम्प्लीट होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो होना है वो होता नहीं है, तो उसके वजह से कार्डियक एंड वैस्कुलर डिसीजेस का इंसिडेंस काफी हद तक बढ़ती है। एक हमने

0: तो कंपटीशन इज अ गुड वे, बट इसमें है कि आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, आपका नींद कम हो रहा है, आप नींद ज्यादा देर लंबे समय तक इफ यू आर अवेक तो आप क्या खाते हो रात को? आपको अवेक रहने के लिए यू विल हैव टी, यू विल हैव कॉफी, यू विल हैव सम जंक. सो दिस गोस एंड हर्ट योर स्लीपिंग साइकिल. सो ये तीनों साइमल्टेनियस है, तो इसको अवॉइड करने का तरीका स्मार्टली करना चाहिए. लाइक जो काम पे हमें करना चाहिए उस टाइम पे वो करना बहुत जरूरी है. जैसे हम बचपन में सुनते थे कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो. सो वो वाला आई थिंक वी शुड अप्लाई, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप उसको पुश नहीं करोगे, उसको आप ज्यादा देर के लिए नहीं रखोगे, तो फटाफट काम कर लो, जितना आपका स्पेसिफाइड सिलेबस है वो खत्म करो. मीन्स स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू नॉट पुश इट, डू नॉट पुश द वर्क फॉर आगे के लिए. जो काम आप तब कर लेना, बिकॉज आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है. लेकिन आप क्या करोगे, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, तो आपको हमेशा रहना है, थोड़ा और डिसिप्लिन होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड योर हेल्थ. सो वो है डिसिप्लिन, यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करती है.
1: सर ये अभी हम लोग जैसे जानते हैं कि हार्ट का पेशेंट को जैसे बोलते हैं कि हम लेफ्ट साइड में ज्यादा पेन होता है सिम्टम्स में, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या अगर हार्ट का मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया?
0: ये एग्जैक्टली बोलना वेरी डिफिकल्ट है, तो बिकॉज आमतौर पे कॉमन ओपीडी में हर पेशेंट मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड में रेडिएशन हो रहा है, यही कंप्लेंट्स के साथ आता है. सो 90% ऑफ टाइम अपना ईसीजी और इको देखेंगे तो वो दोनों नॉर्मल ही रखता है, ठीक है. बट आप अगर 2-3 दिन के बाद दोबारा लगा तो दोबारा भी आपको ईसीजी करना है. ये डिफिकल्ट टास्क है. मीन्स आई कैन, इसमें ना गैस्ट्रिक और कार्डियक का जो सिम्टम्स लगभग सेम रहे, लगभग, बट अगर सेम सिम्टम्स के साथ साथ अगर आपको पसीना छूट रहा है, सांस फूल रहा है, देन 100% वो कार्डियक है, ठीक है. उस टाइम पे आपको हिलना भी नहीं चाहिए, ईसीजी के लिए भी नहीं हिलना, उधर उधर के उधर बैठना है, किसी का फ्रेंड का मदद लेना है और जाना है, ईसीजी करा के आना है. जितना आप वॉक करोगे उतना आप हार्ट को और कमांड दे रहे हो कि मेरे को और ऑक्सीजन दो, मेरे को और न्यूट्रिएंट्स दो, मेरे को और ब्लड सप्लाई दो, तो हार्ट को और स्ट्रेस डाल रहे हो. तो चेस्ट पेन अलोन आ रहा है, ठीक है, फिर भी ईसीजी के लिए जा सकते हो. चेस्ट पेन के साथ साथ अगर आपको पसीना छूट रहा है और सांस फूल रहा है, इधर उधर नहीं, कहीं नहीं जाना, उधर ही बैठना है. जो चीज है उसको इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना है, नहीं ये तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है वो.
1: या ऑफिस में हो या बाहर रास्ता में भी हो या किसी को भी अगर हार्ट अटैक आ गया तो प्राइमरी लेवल में हम लोग का जो एक साधारण रोग तो कैसे स्टेप ले?
0: सबसे इम्पोर्टेंट आपका हार्ट में ये है कि वॉशरूम नहीं जाना और जितना भी मोबिलिटी है उसको कर्टेल करना, उसको बंद करना और एक जगह बैठ जाना, ठीक है. ऑब्जर्व करना, अगर पेन इंटेंसिटी बढ़ रहा है या स्वेटिंग और एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहा है, स्वेटिंग आना, सांस फूलना, तो तुरंत इमरजेंसी में जाना है. बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना, आपका ईसीजी हर जगह नहीं मिलता, ऑफिस में ईसीजी कहाँ मिलता है, तो नहीं मिलेगा. अगर आपको सिम्टम्स डेफिनेटिव लग रहा है तो इट्स बेटर लाइक उसको हार्ट डिसीज की तरह ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन ट्रीटिंग इट एज ए लाइक गैस्ट्रिक डिसीज की तरह. तो बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लाइक जिनका ऑलरेडी बाईपास हुआ है, जिनका स्टेंटिंग हुआ है, वो पेशेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं कि सर थोड़ा सा हल्का सा ना हमें ठीक है बट फिर भी हल्का सा लग रहा है. जो ये वाला पेशेंट्स को ना हम इसीलिए बार बार बुलाते हैं और बार बार उनका ईसीजी चेक करते हैं, बिकॉज ये कैसे डिसीज है, स्टेंट डालने के बाद या बाईपास करना इज नॉट अल्टीमेट सॉल्यूशन. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि जो वहां का चर्बी है, चर्बी को निकाल के उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, बट दोबारा भी आ सकता है ना. तो कुछ लोगों को हाई प्रोपेंसिटी होता है कि दोबारा आ सकता है, तो इसीलिए जब भी पेशेंट को थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स आ रहा है तो फॉलो अप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, अगर आप कार्डियक पेशेंट हो, फर्स्ट एपिसोड लग रहा है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो आप ईसीजी कराना है, दूसरा आपके पास लाइक स्वेटिंग वगैरह आ रहा है तो आप किसी फ्रेंड या किसी अपना कोलीग का मदद लेके हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है. चलो ये हर बार तो नहीं कर सकते हो, देन क्या कर सकते हो? देन आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करा सकते हो. आप लो रिस्क हो, इंटरमीडिएट रिस्क हो, हाई रिस्क हो, तीन रिस्क के ऊपर आपको डिवाइड कर सकते हैं अपना क्राइटेरिया को. हर पेशेंट को हम 3 रिस्क में डिवाइड करते हैं. जो हाई रिस्क है वो हाई रिस्क है, मतलब हाई रिस्क कैसा है, वो ओबेस है, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, लेट नाइट्स होता है, उसका शुगर है, बीपी है, ये सारा, किडनी डिसीज है पेशेंट, ये सारा हाई रिस्क है. इस पेशेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि तेरे को छाती में दर्द हो रहा है, अगर अभी मेरे को पसीना नहीं आना, मेरे को सांस नहीं फुलाना तो ठीक है, कोई बात नहीं. ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है. अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा है, जो रेगुलर पेन नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली ऑलवेज विजिट अ डॉक्टर, गेट हिज ओपिनियन. आपको जरूरत पड़ेगी तो एंजियोग्राम बोल सकता है, एंजियोग्राम करा लीजिए, ठीक है. वो कुछ देख के ही बोलेंगे, आपका रिस्क प्रोफाइल वगैरह, जॉब प्रोफाइल वगैरह देख के. ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज एंजियोग्राम से लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं, नहीं है, ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट का हाथ में एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी बहुत सेफ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेफ है अनलेस

0: अदरवाइज तुम उसको मेसअप नहीं करोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है. बट कंटेम्पररी कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट है वो सारे अच्छे ही करते हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम, 90% ऑफ देम आर लाइक वेरी गुड. एंड टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि कॉम्प्लिकेशन रेट आजकल एनजीओ एंड एंजियोप्लास्टी में less than 1% है, less than 1%.
1: सर ये जैसे अब ये हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट का बात करेंगे, सो जैसे मूत्र का प्रत्यारोपण होता है, ये क्या चीज है और ये किन स्थिति में इसका किया जाता है?
0: सो नॉर्मली हार्ट एक पंप है, अगर हार्ट फेल्यूर हो गया, मतलब हार्ट पंप फेल हो गया, तो उसको हम बदलना चाहते हैं, ठीक है. वो भी इतना आसान नहीं है बिकॉज वेटिंग लिस्ट इतना ज्यादा है एंड सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा है, जो टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग है एंड उसका परमिशन वगैरह लेना पड़ता है. बट कोई भी पेशेंट हार्ट फेल्यूर है, हार्ट फेल्यूर मतलब कैसे समझ में आता है आपको? हार्ट फेल्यूर आपको तो नहीं पता वो हार्ट फेल्यूर है, तो आप सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रहा है और बहुत मीन्स लेटने से ज्यादा सांस फूल रहा है, बैठने से थोड़ा बेटर हो रहा है, अगर ऐसे वाला सिम्टम है, वो दवाई से हम कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे 3 से 6 महीने. अगर 3 से 6 महीने में दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ, पेशेंट का जेनेटिक प्रोफाइलिंग कराएंगे, जेनेटिक प्रोफाइलिंग कराएंगे, एंजियोग्राम करेंगे, दोनों करेंगे. तो और कार्डियक हमारे पेट सिटी का 2-3 टेस्ट होती है, वो इसीलिए चेक करते हैं कि बिकॉज वो ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई अन्य प्रॉब्लम के वजह से हार्ट फेल हो रहा है, मतलब कि कोई सिस्टमिक डिसीज है. तो मैं आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करके लाइक ज्यादा आपका इतना बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स ज्यादा है उसमें. अगर आपका इंटरनल ओनली हार्ट के मसल के वजह से प्रॉब्लम है तो आपको उसको चेंज कराएंगे, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. तो कई बार ऐसा होता है कि रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस होता है, उसमें लंग बहुत ही खराब तरीके से इफेक्ट होती है, तो जब वो इफेक्ट हो जाता है तो राइट साइड वाला हार्ट काफी फेल हो जाता है, तो उसको भी हम चेंज करना पड़ता है. बट उसमें लंग एंड हार्ट ट्रांसप्लांट दोनों करना पड़ता है. तो ये सिंपल आसान डिसीजन नहीं है, इसमें काफी तरह का इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है एंड लॉन्ग फॉलोअप्स होता है. एक हाई एडवांस्ड सेंटर में करते हैं ताकि वहां मल्टी डिसिप्लिनरी होना जरूरी है, मतलब आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट एक कार्डियक सर्जन से नहीं, एक गुड एनेस्थेटिस्ट टीम भी होना चाहिए, एक गुड फिजियोथेरेपी टीम होना चाहिए, एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होना चाहिए बिकॉज आपका वजन भी आपका कंट्रोल में लेके आना है, और एक अच्छा पल्मोनोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है. उसमें बहुत सारा एक टीम है, वो टीम से ही होता है वो कार्डियक ट्रांसप्लांट एंड कार्डियक एंड लंग ट्रांसप्लांट दोनों का.
1: हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये दो चीज हम लोग देख रहे हैं, इसका क्या?
0: जैसे अभी इसको समझने के लिए आप छोटा सा प्रीव्यू समझना जरूरी है. नॉर्मली कोई भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जब मैं हूँ, सो मैं एक जनरल फिजिशियन भी हूँ, ठीक है. मैं एमबीबीएस करने के बाद एमडी करते हैं 3 साल, 3 साल एमडी करने के बाद 3 साल डीएम कार्डियोलॉजी करते हैं, ठीक है. तो ऐसे ही एक सर्जन है जो मेरा कंटेम्पररी है, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, वो सर्जन सर भी आपका पहले वो एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद एमएस करते हैं, उसके बाद एमसीएच करते हैं, तो वो भी जनरल सर्जन भी है. तो इसके बाद जब हम स्पेसिफिकली हार्ट सर्जरीज की बात करें, 5,000-4,000 टाइप्स ऑफ सर्जरीज है उसमें. उसमें से एक सर्जरी बाईपास सर्जरी है, उसमें से एक तरह का सर्जरी आपका ट्रांसप्लांट है, एक नंबर की तरह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. उसमें से नंबर 1 बाईपास सर्जरी है, नंबर 2 ट्रांसप्लांट सर्जरी है. उसके अलावा एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, मिट्रल वाल्व रिपेयर, ट्रैकस्पिड वाल्व रिपेयर, बेंटल सर्जरी, रॉस सर्जरी, बहुत सारा सर्जरी से, फाउंटेन से, बीडीजी से, बहुत सारा है, उन सबको सर्जरीज बोलते हैं. कार्डियक सर्जरी एक ऐसा नहीं है कि कोई भी बोले मीन्स मेरे को हार्ट सर्जरी हो गया तो सबका एक ही नहीं है, सबका उसमें 1000 चीजें है, उसको में समझना जरूरी है. और ये कब इंपॉर्टेंट होगा कि जब आप फॉलोअप में जाते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको तो पता है आपका हार्ट सर्जरी ही हुआ है, बट आपको ये नहीं पता उसमें क्या हुआ है. तो आप हमेशा अपना डॉक्यूमेंट रखिए, नहीं है तो अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम में एक ग्रुप रखिए, ग्रुप में अवर हेल्थ माई हेल्थ करके एक ऐप एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, ताकि बिकॉज ये सर्जरी इमीडिएटली नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, बट 10-12 साल के बाद ना वो डॉक्टर आपका एक्सेस में रहेगा, ना आपका पर्ची आपके पास रहेगा, ना आपको उसके बारे में कुछ पता है. तो उसमें ना क्या होता है कि बार बार 2-3 एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है, वो आपके लिए मीन्स अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है. तो इसीलिए कि स्मार्ट वे ये होता है कि डिजिटल कॉपीज रखो अपना हेल्थ का और हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, ताकि उसको जो एनालाइज करने वाला दूसरा दोबारा कहीं और डॉक्टर के पास कहीं और शहर में जा रहे हो तो ईजी हो जाएगा.
1: सर ये जैसे कि एक हार्ट सर्जरी करने के लिए कितना टाइम लगेगा और इसमें सक्सेस का रेट कितना होगा?
0: नहीं, वो आप सर्जन से पूछना चाहिए सक्सेस के रेट का, बट सर्जरी एक एक सर्जरी का अलग अलग टाइमिंग होता है. सिंगल मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट का अलग है, मिट्रल रिपेयर का अलग होता है. जो पीडियाट्रिक केसेस है, फाउंटेन है, बीडीजी से, उसमें 18 घंटा लगता है.
1: सर अगर हार्ट का पेशेंट है आपका, उसका अगर डिटेक्ट हो गया कि डॉक्टर तुम्हारा हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके बाद की लाइफ स्टाइल उसने किस तरह से बिताना है?

0: नहीं
1: उसके लाइफ स्टाइल क्या पर है लाना
0: का? जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आप मान लो है कि किसी को मैंने स्टेंट डाला, तो स्टेंट डालते समय उसका हार्ट रेट वगैरह सारा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको अगले दिन से काम पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अमिताभ बच्चन साहब को ही देख लो, उन्होंने सुबह स्टेंट डालाया, शाम को आके फुटबॉल मैच देखा, ठीक है। स्टैंडिंग ऐसा ही है, ठीक है। कुछ कुछ लोग होता है कि जिनका प्रेजेंटेशन ही खराब है, मतलब है कि उसका सांस फूल रहा है, बीपी कुछ नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मैंने स्टैंड डाला, उसको रिकवर होने में 2 हफ्ते लगेगा, ठीक है। अगर सर्जरी का बात करें तो सर्जरी का 15 दिन तो लगेगा, हफ्ता 15 दिन तो लगेगा।
1: लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज?
0: नहीं, कोई लाइफस्टाइल का चेंज की जरूरत नहीं। नॉर्मली स्टैंड डाले, बाईपास करे, कुछ भी करे, तो अपना ये जो इनिशियल पीरियड फर्स्ट फॉलोअप सेकंड फॉलोअप के बाद अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल रूटीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे मैं पेसमेकर डालता हूँ, AICD डालता हूँ, इन पेशेंट्स में हल्का सा हम चेंजेस बोलते हैं, बिकॉज हाथ नहीं उठाना, सडनली शेल्फ के ऊपर हाथ नहीं रखना, या शर्ट नहीं पहनना, बिकॉज शर्ट पहनने में हाथ उठाना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी, सो थोड़ी देर बैंडेजेस लगाना पड़ेगा। हर इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप में हम बता नहीं सकते, बिकॉज हर प्रोसीजर अलग है, हर पेशेंट अलग है। बट जनरली आपका सिंपल PTCA या सिंपल केसेस के बारे में बात करो, तो अगले दिन से आप अपना काम कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारा हमारा मरीज है जो दुबई से आके करा के जाते हैं, जो बांग्लादेश से आके करा के जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक दिन के लिए आते हैं, करा के चले जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है उसमें।
1: सर, अगर साधारण आदमी अभी से ही हार्ट का कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए पहले से किस तरह का प्रिकॉशन ले सकते हैं?
0: तो एक तो आप एवरीडे 7 to 8 hours का स्लीप रखो, नो मैटर व्हाट, स्लीप, और घर का खाना खाइए, बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए, हरी सब्जियां जितने मिले उतना खाइए, और जितने फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स भी हो, जितना फ्रूट्स हो सकता है उतना फ्रूट्स खा लिए चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जो फ्राइड फूड्स है, जो तली हुई चीजें है, जैसे पूरी वड़ा ऐसे चीजें है, उनसे दूर रहिए, फ्राइड फूड से दूर रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट वॉकिंग, दिन में 30 मिनट 100% वॉकिंग करना है, एवरीडे वॉकिंग करो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, लिफ्ट हो तो लिफ्ट को इग्नोर करो, स्टेयर सीढ़ियां लो, वॉक करने के लिए कोशिश करो, जितना ब्लिंकिट और जेप्टो से ऑर्डर करना बंद करो, आप जाके खुद से लेके आ जाओ, खुद जाके लेके आओ, उससे आपका कैलोरीज बर्न होती है, शाम में एक टाइम रखो या नहीं तो सुबह उठ के लेके आ जाओ, सो एक मोटिवेशन मिलेगा आपको, वो जरूरी है, उससे आपका ये हो जाता है कि लाइक एक्सरसाइज कैलोरीज बर्न होती है। और एक इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर आपका इतना काम नहीं है, लाइक आप रिटायर्ड हो गए हो, तो खाने का जो क्वांटिटी कम कर लीजिए, और 3 बार जो खाने वाला मील को 2 बार कर लीजिए, ताकि कैलोरी इनटेक कम हो, तो वो भी बहुत हेल्प करेगा आपका।
1: सर, आपसे बहुत बात की, आपने बहुत जानकारी भी दी, तो जाते जाते आप जो हम लोग का इस वक्त आकाशवाणी खरसान सुन रहे हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?
0: प्रिवेंशन इज मच मच मच बेटर देन क्योर। एक बार आ गया तो हमेशा दिमाग के अंदर रखता है, लगता है कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए था पहले ही, तो हम पहले वो एडवाइस देने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप आके उसका सुविधा ले, लाइक उसका यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। जो जो आपका हो सकता है हम अर्ली डेज में पिकअप करेंगे, तो ट्रीटमेंट इजी हो जाएगा। थैंक यू
1: सर। अहिले हामीसँग बात गर्दै हुनुहुन्थ्यो हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर शशि जन्जिरालाले, हामीले बात गर्यौँ उहाँसँग। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा भन्छौँ। नमस्ते।

0: अब आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दीमा समाचार यस केन्द्रबाट रिले गरेर सुनाउनेछौँ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
2: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: WFI chief Brijbhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा

0: एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कु कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों

चुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पर्यटन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।

0: मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन समाज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बढ़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हामी आकाशवाणी खरसाङबाट बोलिरहेका छौं, एफएम 103.5 मेगाहर्जमा। श्रोताहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ दार्जिलिङ एफएम 100.2 मेगाहर्ज, न्युज अन एयर एप अनि ओटिटी वेब प्लेटफर्ममा पनि। समय साँझको 5:05 भइरहेछ। अब आरम्भ गरिरहेका छौँ फौजी श्रोताहरूको निम्ति फिल्मी गीतको कार्यक्रम जय जवान।

0: 27, our census, our progress.
1: यो प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको। अब प्रस्तुत छ हिन्दी फिल्मी गीतको कार्यक्रम। प्रथममा सुन्नुहोस् कुमार सानु अनि फिल्मको नाम छ दिल है कि मान्ता नहीं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए

बत्तीसमा मेलोडी टाइम, 1:02 सुन्नुहुनेछ तिब्बती कार्यक्रम, 2:30 सुन्न पाउनुहुनेछ नेपाली आधुनिक गीत, 3:00 फिल्मी सङ्गीत, 3:20 गीत सङ्गीत, 4:00 घर संसार, 4:30 शिक्षा ज्योति, जस अन्तर्गत सुन्नुहुनेछ निवेदिता भारतीबाट सौर्य ऊर्जामाथि एक जानकारी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: पुग्छ। अनि के छ भन्दाखेरि विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रताम, पात्रत्व धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थात् विद्याले विनम्रता प्रदान गर्छ र त्यो विनम्रताले योग्यता अर्थात् पात्रता प्राप्त हुन्छ र त्यो योग्यताले मनुष्यलाई अर्थ यानि धन अर्जित गर्ने योग्य बनाउँछ। अनि त्यो धर्मले धनले धर्मको काम यानि सत्कर्म र परोपकारको साथ साथ आफूलाई आवश्यक आफ्नो जीविका यापन गर्ने मौका दिन्छ र त्यसद्वारा सुख प्राप्त गर्छ। यानि भारतीय शिक्षा पद्धतिको मूलमा केवल नोकरी पेसा धन प्राप्तिको निम्ति शिक्षा होइन तर शिक्षा परोपकारको निम्ति सत्कर्मको निम्ति र शिक्षा एउटा मनुष्यलाई वास्तवमा मनुष्य बनाउनुको निम्ति होइन र
1: हजुर।
0: र यस्तोमा मोदी सरकारले जुन काम 1947 आफ्नो
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
5: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया, विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा ले।

0: चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
2: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों

0: और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
2: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
3: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के
1: जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7116-2331-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के

0: और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी ओटीपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी,
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहां कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए, बिना थाने जाए हुए, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
1: जी।
3: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझे कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा, और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है, और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप

0: फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए कर 12,300 तो
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं। प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
2: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
2: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था पे ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है। मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूट में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाता है, उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पर जो दूध है आके पी जाएगी
1: जी,
0: तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क

0: रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इंपर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हो। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूलमंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से?
2: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
2: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितनी मौतें हो रही है इसकी वजह से, क्या कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी इसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज्यादा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतरराष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा
0: जी।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
3: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
3: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, छत्तीसगढ़, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
3: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
3: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
3: और ये बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है क्या, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल।
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना।

0: अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं लगातार हमारी हर प्रकार।
1: ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

0: पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
1: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
0: जी,
1: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक जाते
0: बैंक में जाना चाहिए।
1: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है
2: आपका? जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
0: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाए, थोड़ा सा बताइएगा।
1: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहे और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
0: जी,
1: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए, और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीडियरीज है, उनका दायित्व तो बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व तो उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन

0: कैसे हुआ है?
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं। वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे। आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
2: जी जी, नमस्कार सर जी। बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी, सवाल पूछिए।
2: जी, प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
2: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए। क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं, तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ही होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला
1: जी।
3: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई, सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरी जिंदगी के राज में एक राज तुम भी हो, मेरी बंदगी की आस में एक आस तुम भी हो। तुम क्या हो मेरे, कुछ हो या कुछ भी नहीं, मगर जिंदगी के काश में एक काश तुम भी हो। मैं दिन हूँ, मेरी शाम हो तुम, मैं नींद हूँ, मेरा ख्वाब हो तुम, मैं लब हूँ, मेरी बात हो तुम, मैं तब हूँ जब मेरे

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में। पूछती है मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। ये जो सुन रहे हो तुम इतने गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या।
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नज़र अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।